मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द बस

राम गुरमुख मिल रही है घर बाज है शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई अहन से जपी सदा सा लाही साच शब्द लिवलाई आनंदन सह

मन मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुड़ न पाइए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की कहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनों

ले ज्यों हर पावै भगवान। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। इकना कर्म है दे वड्याई इक भरम भवै अवे महाना।

कै मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावह मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

मेरे भाई मिल हर हर कथा करहो, हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवत गुर शब्द तरहो, मेरे मन हर गुण

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

सत्संग समावो सास सास नह विसराय अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

अवर काश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

रहाउ। सोवत हर जप जाग गया देखिया बिस्माद, पी अमृत तृप्ता सया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे, सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं, नीच अनाथ अजान मैं, निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही, दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी। राग

दृष्ट दृष्टाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

मन अवर न भावे चरनावे चरनावे उलझियो आलम करंद कमल ज्यो अनरस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस घूटी है।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठा रहे मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पुरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोवै अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लहिया मन हठ कर्म करै।

पूरे एक सेवक एक परम पुलहाए आपे करे हर आप कराए एको वरतै अवर ना कोए मन रोस की जय जे दूजा होए।

उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा।

नित तिहाइय जोखिन मह किलविख सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर निःफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेव हो सुखदाता स्वामी जिस सेव

राम कली महला पहला। सागर मह बूंद, बूंद मह सागर, कमन बुझै बिद जाने। उत्पुज चलत आप कर चीनै, उत्पुज चलत आप कर चीनै, आपे तत पछाणे। ऐसा ज्ञान बिचारै कोई, तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर, उसन सीत बिद सोई। ता की गत मित अवर न जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मह नार, नार मह पुरखा।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहाव उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुरु।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

इहो शरीर सरवर है संतहो, इशनान करे लिवलाई, नाम इशनान करहे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम बिन सजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम भुलाई।

तरहा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा।

छंत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

कारण इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।

नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, ओए पहाणे चलन अपने नित झूठ।

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

सुखमन पोचन हारी रे, तीर्थ बरत नेम सुच संजम, रव सस गहने देऊ रे, सुरत प्याल सुधारस अमृत, इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल,

अनहद बजहै शब्द अनहद बजहै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाउ।

हर हार हर उड़तारियो, जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

बिन हर गुर किन पत पाई हे, कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी। मनमुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर परम

है दूजे भरम भुलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई। गुरमत लेहो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग

यो भव जल जगत शब्द गुर तरियै अंतर की दुविधा अंतर जरियै पंच बाण ले जम कौ मारै गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइय शब्द सुरत बिन

पुरख मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी।

मर मर जम है शब्द ना विचार है। अंतर माया मोह गुबारा ज्यों सुपने सुध ना होई है। एक पंचावार शब्द है लागे सतगुर आए मिलिया बट भागे। अंतर साच रवह रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द सियापे। सच्चा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे।

पढ़ै हर नाम न बूझै, माया कारण पढ़ पढ़ लूझै। अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर त्रिजै। हे

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए। मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहे। मेरा प्रभु साचा असुर संहार।

आनंदन गुण रव है दिन राती, आनंदन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा भाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आनंदन

सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया शुद्ध है शब्द विचार है।

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम पहो भागै।

आद माध अंत प्रवरवया कृष्ण बुझी परम अंगनां गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बख्शांद गुर जप जाप।

नाम। सोलह कला संपूर्ण फलया, सोलह कला संपूर्ण फलया, अंत कला हुए ठाकुर चढ़या।

आओ। तब्त बुझी पूर्ण सवे आसा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा। अनहद शब्द अचर्ज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जहाँ कौ प्रगट पहे गोपाल, ताँ कै दर्शन सदा निहाल।

महल दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने साध संग

ओडा कूप गोज खिनका ढै, ज्यो ओडा कूप गोज खिनका ढै त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल